0: नहीं नहीं नहीं रक्षति दुःखकरणी नहीं नहीं रक्षति दुःखकरणी
1: Thank you.

0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो
1: वाहेगुरु
0: बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो
1: वाहेगुरु वाहेगुरु।